0: जीवन इस झरने की तरह है, समझ गया? आज इस झील की तरह है जो ऊपर से शांत है, लेकिन इसकी गहराई में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। दुनिया में झील की गहराई में सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे यदि ये फूल जो मुस्कुराते हैं,
1: झील के जाते हैं,